0: रेडियो सुनो 91.7 FM
1: केट केट कोट कोडाम कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर लिसनिंग टू